0: थेरी काना इ पुलिस थेरी बड़े बड़े बड़े ब्राइन कॉपे डाबन आनिया नी अब होया बनाने वाली कीड़ी आती कीड़ी आती कीड़ी इमी आकु उम फे तू होई आने इ बड़े कर कुड़े मामा कोनी मता को उठाओ फे के फे के उका मो हां इवा आरे काया फी यारी मन फा टिकी अपन यामानी इ तोबरा ओ आमाने कुवे के सामा थारी एक निणी माकु उपथा ककड़ी ही कुमणा भम आमा फाड़ी ही रोवे आने ब्रेदा कुड़ेनो मामा कड़ी मदा कु उठाव वाई का मामा कड़े पड़ी उबराई मामा कने कड़ी अठाव आकु माने मानक फेल तो बम तीती हा वानो वानो कगु होने हिनी मोहा रुकार के इबाजा वायुड़ी माने ही बोल के आनिया कु उड़ो रोफो थाई आरी ही रोवा तारे कुड़े यो ओ मामा कु कुवे कते कुवे कते फेल के तो कौन आज करा उबरा जाफी ओं आरे या तो अबे याना करी फूली हा या मानी माँ सोमिताओं पे मिहवानी ना पढ़े पे बनवानी सही जगह के घोड़े मानी कुबो हा होड़े मोटे तैयार बोकता तैयो अनिया कु उम्रे आरी ही रोगा तारे कुबे यो ओ मामा करी कुवे कते फेल के फेल यारा यारा फिर वाली ना शरीर डिबे फिर फिर न्यामना माने कुयाफी उनका उपवास था बारी ना जाऊं बड़ी इस प्लेट की वो कुआई अरे रोवा वालों के रोवा मामा कहूँ नहीं रखूँगी पुरुकार वालों का इन्हीं रोवा आजा मनाइ कर वालों ऐसा रोयकुं ए ओबोब जब आई ए रोवा आजा कु माने मनाइ कर ऐ ना कांगे जारे पड़ी जाओ यानो मामा थब थब माने बोल बोले पड़ी वाइन थक नॉन थाप उन्हें मोटा आई के आरी ए फिर इबाक के हाको को प्रोडे रे इतना फिर इबाक के माँ प्रोडे ओके अब खड़ी नियानी न्याओ और फिर थोड़ी आरी ए पड़ी जा मामा को नहीं मता कुओ तू कांगे ना फिर थब टिटी हा बहानो होने वाली हिनी मोट पुरुकारे यानो मामा आरे ए बोलिया तार को बेजो कुबे यो हो मामा का कुबे कते काफी लाव आरे नानी में हिला रे वो अचारु माँ पे यहाँ मकुई यात्रा को मामा ने ठाबो गए आरे ए बोलिया तार कुबे यो हो मामा का कुबे कते की कल सामा थारी मामा का ओ है तू हा की आरे काफी लाव रे अन्य हा काफी लाव मामा पोथे मकुई इन्हाँ वा कुकु तो इबा काफी कु शिव माँ पे मकुई आता यात्रा मामा उन्हें के जाफे ओवे वे हो आता माँ कुई ओ पो आवा तेरे माँ आये ऐसे क्या नो राबे जाइयो माँ तो फिर तारारियो कुई मिलाई मुरामंग फिर तब हम तीती हा मुरामंग जाइ कमी आरे पड़ जाओ ये जाकू फा मुरामंग यानों थबुन फिर आरे ओ ओ मंगे नाथे निया माइ हां बोए हा नाथे था माइ हे उनके वानों रोवा रोवा कमी वानों जा रोवा ना कुन की ना बे कगड़ पड़ पड़ाई इबा ना बे आरे निया ने हे जाकू इमी कोई मिहान वाई का वामक शर्त अब तो अगवे वामक पड़ेगा कुते एनी इन्हें
1: Entre la forêt tropicale du Brésil et les bushmen de Juruansi de Namibie, qui ont chanté la pluie fine, s'accompagnant de leur hack de chasse, c'était deux chants de pluie survenus dans un rituel du chaman Yanomami et qui ne sont pas très musicales ou plutôt mélodieuses, car constituées principalement de paroles rythmées avec un débit assez soutenu qui va avec. Une pluie de Himalaya, c'est un très beau titre qui était donné à cette pièce longue issue de la collaboration internationale des musiciens traditionnels. Un peu à l'image des autres genres musicaux qui procèdent ainsi depuis longtemps, ce type de collaboration dans la musique traditionnelle reste encore un peu timide. Et là, autour de ce morceau, imaginé par Sujad Hussain, un groupe de musiciens indiens s'est constitué avec au milieu le malien Mamadou Diabaté et son instrument de prédilection, la kora.

कोई जो अजी समय का मैंने चल लाऊंगा अब इतना आम दिखाए वो हु कोई जो असे जो सुको के जो कुछ पली अब इतना ईसा का मन हु कोई दिखा तो संग पर मत सनो को दादो काय हवे दियो फोगा ने तने काना काते हवे दिन फुर मत काय फुगे फमन दिन रे इतना ने नुने करेन दिन बाबू जो को काते मई Ibrahim jungun klube de nakati ndi warte man tikinanti per bus na aspega Hassan Traore ro foga Yakubu Bali ro foga ro foman daga Mustafa Sisse ki beno Mohamed 5 daga kone ro foga

0: मार गेट का ऑफिस से धक्का कर दो बिल्कुल भाई धक्का कर दो ला कर दो नमस्कार
1: बोलो नहीं वो कर दो बोलो नहीं सब गरीब बंदो जो नहीं जा बोलो नहीं तो ना तुम से
0: ना करो आज मैं बोलूंगा तो सब कर दो